सकल प्रजा जन आपस वारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो। कट कट के अंत

सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा, आप आपनी बूझ उचारा। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अन

सिगरी श्रेष्ठ दिखाय अचंपव आद जुगाद स्रूप स्यंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। तुस जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे अस्तुलित सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते अहै, ताके काल निकट न अहै। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन

अंतर गुर आराधना जह जप करना, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरना, सतगुर सेती रख।

कला जय सिंबैर लागे जरा ब्रह्म ज्ञान के मन हो प्रकाश जह तारू प्राकाश ब्रह्म ज्ञान के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञान के नाह अभिमान ब्रह्म ज्ञान ऊचते ऊचा मन अपने है शब्द नीचा ब्रह्म ज्ञान से जन पय नानक जन प्रभाप करी ब्रह्म ज्ञान सकल गिरी नया तुम राह ब्रह्म ज्ञान चीना ब्रह्म ज्ञान की सब ब्रह्म भया ब्रह्म ज्ञान दिकाश बुरा नाम भया ब्रह्म ज्ञान सदा साम दरस ब्रह्म ज्ञान की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञान बंधन तुम मुक्ता ब्रह्म ज्ञान की निर्मल योग्यता ब्रह्म ज्ञान का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान एक उपरास ब्रह्म ज्ञान का नह विनाश ब्रह्म ज्ञान का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञान परोपकार माह ब्रह्म ज्ञान का नाह तंदा ब्रह्म ज्ञान तितावत बंदा ब्रह्म ज्ञान का हुए सुपरा ब्रह्म ज्ञान सुफल फरा ब्रह्म ज्ञान संग सक्र धारण ब्रह्म ज्ञान जप सक्र संसार नानक ब्रह्म ज्ञान जप सक्र संसार ब्रह्म ज्ञान का एक रंग ब्रह्म ज्ञान का बस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञान का मान परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहजन वाहनान ब्रह्म ज्ञान का नह विनाह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का बीता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चंद ब्रह्म ज्ञान का नरवनवंत ब्रह्म ज्ञान जस कारा प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ भागी पाई ब्रह्म ज्ञान का बाल पर जाइय ब्रह्म ज्ञान का जहम हेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाह ब्रह्म ज्ञान का सकल मान वाहि ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना पेद ब्रह्म ज्ञान का सदा दिश ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जयादा खेर ब्रह्म ज्ञान सर्वकारण ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञान के अद ब्रह्म ज्ञान जाना ब्रह्म ज्ञान का अंदर पा नान ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीव न मरता ब्रह्म ज्ञान भक्त जगत जी कनाद ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विदहता ब्रह्म ज्ञान अनाथ कनाह ब्रह्म ज्ञान का सब उपरहास ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान अनिरंकार ब्रह्म ज्ञान शुभ ब्रह्म ज्ञान बने नान ब्रह्म ज्ञान सर्व का धन श्रोक उरता रजवंत नाम शर्मापीखा भगवान निमुख निम ठाक नमस्कार नानक परस सकल निष्टि मिथ्या नाह रसना परस मन प्रीत निरंजन दरस उपार त्रिय रूपना पीखा नेत्र साध की टहल संत संघीत करण ना सना काहु की निंदा सब जन आस कमंदा गुरु प्रसाद विखिया पर हर मन की बहन मान दी टरा इंद्र जीत पंच दुहति रहत नानक मद्दी कुआ परस बैस नो सो जहु प्रसो प्रसन्न मिशन की माया तुह भिन्न कर्म करत वह निह कर्म।

सुनो परम गाद पावे भगवत दीप भगवंत भगत करंग सकल त्याग दोष का हनुमान तू बिन साय सकल परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खुवै दस भगवत की माया तू तम हो भगवंत की टहल कर नित नित मान तन हर पै बिसन प्रीत हर के चन हृदय बसव नानक भगवत दीप भगवंत का पावे सो पंडित जो मन प्रभु त राम नवातम सो त राम नव सार रस पीवा सु पंडित का उपदेश जाग जीव हर कथा हृदय बसव सु पंडित फिर जो ना वेद प्राय समृत पूजा मूल सुख मैं जान स्थूल चाहो वरना कर दी उपदेश नानक पंडित का सदा।

सिद्धांत रचना प्रारभ रची वह वेदन प्रकार अष्टपति कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट वह तीर्थवासी कई कोट अपान ब्रह्म दास कई कोट वेद के स्रोते कई कोट दीप स्रोते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट कव का विचार कई कोट नावतन नाम त्यान कर कई कोट पयाभिमानी कई कोट आया ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगा तुम कोर कई कोट

नानक रंग प्रकार कर कर देखा अपने बुढ़िया नानक साहब में रहे समय प्रभ पावे मानुख गात पाव प्रभ पावत पाथर त्राव प्रभ पावे बिनसा रंग प्रभ पावत हर गुण पाक प्रभ पावे तम पद तिवंधारा आप करा अपन विचार दुह सिर का स्वामी की लभ किसा अंतर जम जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहूँ मानुख ती क्या हुए आवे जो देह पावे सोई करावे उसका हाथ हुए न सब की शैली जो देह पावे सोई करिया

कृष्ण मनीष कीट का राज पार ब्रह्म ग्रीनवाज जा का दृष्ट कशु नयावतिस तत्काल दह दह प्रगटा जा कहु अपनी करा बक्सी सता करी खाना गना जगदीश जीव पिंड सब दुखिरा कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश

बुद्ध सब का जाना अवरंग सर्व सुख हुए बड़ भागी के सब रावत हुए करण करावन आपिया सदा सदनान खर्जा करण करावन करण हार इसका हाथ कहा विचार जैसे दृष्ट करे तैसा हुआ पिया बाप राव सो जो किस किनो सब बना रंग सब दूर सब हो का संग भूख जाया देखा करा बबी का पहानी का

समस्तो प्राजय सदा सर्वसाजय समस्तल सलाम है सदैवल काम है निर्वास रूप है गादानूप है उंगाद रूप है नास रूप है नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाम त्रिपरक त्रिपाद्य गंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सुसर्भा अनुराग्य त्रिभुत स्वरूप है।

जो सदा हमारे पच्छा श्रिया स्तुर जो करे और रक्षा राख लो मेरा कनहारे। साहेब संत साहेब प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हम पुरी जित्र दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की ओ बेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देवदा दर्शन बजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरण को पल मोहम्मद की ओ घट घट के अंदर की जानत। भले बुरे की पीर बिछाणत चिटी दे गुंजर स्थूला सब पर

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सह सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परिवार भरिया शब्द गावना आईया।